संत गाड़गी बाबा महाराष्ट्र के महान समाज सुधारक। उन्होंने समाज से जाति भेद, बुरी आदतें, नशाखोरी और अस्वच्छता के प्रति जीवन भर जन जागृति की। वे गांव गांव घूमते और प्रबोधन के माध्यम से लोगों को स्वच्छता और नैतिकता का पाठ पढ़ाते। उन्होंने हाथ में झाड़ू लेकर स्वयं गांव की सफाई करने की परंपरा शुरू की। बाप हो ईश्वर सगळ्यांमध्ये आहे। प्रत्येकाची मदत करा, सेवा करा, प्रत्येकावर प्रेम करा, यही संदेश उन्होंने जन जन तक पहुंचाया। वैसे ही राष्ट्रसंत तुकड़ोजी महाराज महाराष्ट्र के एक महान संत, कवि और समाज सुधारक थे। भजन और समाज प्रबोधन के माध्यम से उन्होंने ग्राम विकास, एकता, स्वच्छता और नैतिक मूल्यों का संदेश जन जन तक पहुंचाया। राष्ट्र संत तुकड़ोजी महाराज का प्रसिद्ध ग्रंथ ग्राम गीता आत्मनिर्भरता और आदर्श गांव का जीवन सिखाता है। उनका संत साहित्य में अमूल्य योगदान है। अपने जीवन में उन्होंने बहुत से भजन लिखे और गाए। भजन में भाव सरोपरि है, ईश्वर भाव प्रिया है, यद भावम तद भवति। और इसी प्रेम भाव के संदर्भ में राष्ट्र संत तुकड़ोजी महाराज का बड़ा ही प्रसिद्ध भजन है, मनी नाई भाव मणि देवा मना पाव। आओ उनके ही श्रीमुख से सुनते हैं।

0: खासदार को चाहे तो ताज पहना दे, वो खासदार को चाहे
1: तो ताज पहना दे,
0: वो अष्टभार मौसम में एक खुशी ला दे। जो भटकते हैं, जो भटकते हैं नहीं पाते रास्ता कोई, उन्हें एक इशारे से जरा गौर कीजिए, उन्हें एक इशारे से उन्हें
2: तो सुनिए ना।

0: मेरे घुटे हुए अरमानों को एक बरकत दी।
1: कौन है जिसने मुफलिसी मुझसे छिनाकर मुझे आबाद किया।

0: Thank you. Thank you.
1: जब तेरी इनायत पर मेरी नजर जाती है, जब तेरी इनायत पर मेरी नजर जाती है, मेरे साईं, मेरे बाबा, मेरी आंख भर आती है। आप दे रहे हैं हमें इस कदर, आप दे रहे हैं हमें इस कदर कि हाथ दुआ में उठने से पहले ही मेरी झोली भर जाती है।

दरबार हजारों देखे हैं, दरबार हजारों देखे हैं, तेरे दर सा कोई दरबार नहीं। दरबार हजारों देखे हैं, तेरे दर सा कोई दरबार नहीं। जिस गुलशन में तेरा नूर न हो, जिस गुलशन में तेरा नूर न हो, साईं ऐसा तो कोई गुलजार नहीं, साईं ऐसा तो कोई गुलजार नहीं।